शरीयत भी आई, विलायत भी आई, करामत भी आई। सरे दस्त दामा ने ईमान आया, मोहम्मद के आने से कुरान आया कि मोहम्मद

जिसने देखी एक झलक रुकी वो शैदा हो गया, एक नजर पड़ते ही हर बीमार अच्छा हो गया। कैसा ही तूफान हो लेकिन पार बेड़ा हो गया, या मोहम्मद उसका हर गम से कनारा हो गया कि जिसके सर पर आप

गुनाहगारों की बख्शिश की कोई सूरत न थी। करबला में लाज रख ली आपने ईमान की। बख्शिशे उम्मत पे जब शर्ते शहादत लग गई। मरहबा ए फातिमा के लाल हुसैन इब्ने अली, दे दिया सर आ

अपना वाली है वही जो साहिबे मेराज है, जिसकी नालेने मुबारक अर्श की सरताज है। गम के हाथों मेरे मौला जिंदगी का राज है, एक नजर की हस्ती है इबरत फकत मोहताज है, कि तुमने जिस कतरे को भी

को साफ करो, काबे का तवाफ करो, चलो चलो हज का महीना आ गया, चलो चलो हज का महीना आ गया।

0: चुटकी कहेंगी। अपने आप को बहुत चालाक।
1: देखो रवि, बर्दाश्त की भी हद होती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे चुटकी मत कहा करो। अब मैं चुटकी नहीं हूँ।
0: अरे मैं तो अब तक बेखबरी था। सच कहती हो पंजाब की रेशमा, अब तुम चुटकी नहीं रही।

0: मदहोश हूँ मैं और होश नहीं, अब क्या होगा
1: क्या होगा
0: कुछ तू ही बता दे, जोरा जपी अब क्या होगा
1: क्या होगा।
0: पहलू में रहे तुम सा हंसी, अब क्या होगा
1: क्या होगा।
0: हो जाऊँ न मैं दीवाना कहीं, अब क्या होगा
1: क्या।

पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट

0: बात ये है हो गया है मुझको वो
1: वो क्या
0: वो बात ये है हो गया है मुझको वो समझ लो ना कि वो
1: काम मत